0: धार्मिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले अति नै रमणीय स्थल मौलाकालिका मन्दिर जाउँ, आध्यात्मिक ऐश्वर्य र पर्यावरणीय सम्मोहन प्राप्त गरौँ।
1: एउटा सानो स्वर्ग मौलाकालिका मन्दिर,
2: धार्मिक सेवा समिति मौलाकालिका मन्दिर, गैंडाकोट 9/85, फोन 078-50-12-26, वेबसाइट www.maulakalika.org.np।
3: विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मिठो खानाका लागि गैंडाकोट फन पार्क, गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि, गैंडाकोट 5, मोबाइल 98612-20437।
4: अहिले बिहानको 7 बज्यो।

0: सम्पर्क सिद्धार्थ चश्मा घर गैंडाकोट 4 ओम शांति गेट अगाड़ी फोन 0785015 16 मोबाइल 98473 23 613
1: विजय विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612204437
2: अहिले बिहानको 8 बज्यो

0: सेमिनारमा आरामदायी बास र मिठो खानाका लागि गैंडाकोट फन पार्क, गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि, गैंडाकोट 5, मोबाइल 98612-20437।
1: अहिले बिहानको 9 बज्यो।